0: 你中国接触了我爹当会儿心个名度既昂扎诺既卡不着诺送不定你出钱去的就着是钱中啊你你前中堂去贼不啦
1: 何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子何子 ख़राब से जे
0: क्या मुझे यार सी जे साया शिम्बु दिन तुम आसे न ख़बार यूं कुछ जे मशीने ना दे साया लांग ची यू शिम्बु शितो तिंजे शिम्बु ल ये उन्हें गोचे मसो रंगे शिम मारी किन्हें लांग ची केर दे दू जंगल लिंग दिन यास दे गयू
2: 비간창매
0: 查尔金斯吗？查尔金斯。让卡尔金斯，什么事？光木松，俺来回去学习。嗯，开心吗？这让来查尔金斯。光木松啊。嗯，俺开心吗？松，没事呢，明天就呢，十二点请马上。哼，行不？都，听这个了。
2: ran tyu ne tin der be
0: tin je me zhongguo le jie sa xie qin bu xia xia xi ge de de da ba sa min zhi da sha la se yu a sam lu shtan du lo jiao ge chuo me bian se de jie lu xi xin bu tin je qun se niu me ei lu xi ti xin bu la
2: ni di chi me ni chi ya di ran tyu ge ne nao ge bu tin je yin be
0: a le 你也提供三路顶级是等的月。嗯。嗯。你也买个买给顶子擦擦擦不是？今晚你买给表妹，先是提个买的吧。现在没顶了，谁也信不有的，谁也见哪一个不求你开三十。嘿嘿嘿。让了最后头。啊。哎，点几多？点了几多？啊，是，哎，给不到啦。让你信买的。 俺穷队那次我学校还生不育，现在你大爸可是当用足浴，看着苏那臭米多，听不见俺们两个抢脚也难救，上了没有二十度。阿姐，爹爹，今年他能不能参加的这不？这个顶级给不啦？他那是对北京城市大丫头。
2: 对北京城市嘛的，四川城市，红楼路城市的这里。
0: 哇，哈哈，要不都？
2: 中国人家定死不了啊！天天弄得丢下，你们进来了，你也做不差不的。嘿嘿，你这干了，啷么着多啊？哇，对的。哦，都是的，让人家过大钱，吃了嘛成够的，全部都包的吧？
0: 俺也谈生意，钱账俺身边住热情的，若不去过的。 让给俺让不起的，俺也，嗯嗯，俺爹让不起没，现在让给让不起的也不起用啊，嗯，你也让，让把自己用过这边，哎，自己，哎。